हमने सर्वलोह दृचा हमने सर्वकाल दृचा हमने सर्वलोह सदार चा हमने बंतन महीप जलत्र महान जत प्रसोकरण निधान जग मगत पूर्ण प्रताप अमृत मी जय जप तुजा।

वाहे गुरु चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। खालसे जी की देख तेग फतेह, चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे।

समूह गुरधामा साहिबां जी दे सुख दे दर्शन दीदार मेले बोलो जी। सरबत्र समूह खालसे जी को नगारियां निशान साहिबां संजुगत तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब जी दे सुख दे दर्शन दीदार मेले बोलो जी।

चतर चक्रवर्ती चतर चक्र उपदेश स्वयं सर्वदास सर्वते दुकाल प्रणासी दयाल स्वरूपे सदांग संगे अपंगन भूते देख ते गुप्त एन प्रंगे द्रंग याप्त जिन नान गुरु गोविंद सिंह श्री काल को जिस हाय दरबार में दुर्बारा सचकर से रंकारा लक्ष्मी करी दुर्बारा।

विस्मात स्मृति विस्मात सालाह विस्मात उजड़ विस्मात राह विस्मात नेड़े विस्मात दूर विस्मात देखे।

कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपये पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कुड़ कुड़ ने हुलगा विसरिया करता किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलन हार कुड़ मिठा कुड़ मा